सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सब ऋषि मुनि महात्माओं की मात पिता गुरुदेव

स्वस्तिस्तया विनाशा क्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्य तांत स्वस्ति मृवंतु नः। हस्ते अक्षतान पुष्पाणि गृहीत्वा शांति पाठं पठेत। चलो जी हरि ओं वाओं भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्क्षतरा स्थिरंग सुषुवाकुस्तनो बिभ्यशेमि देवित जदायु शतमिन्न शरदो अंतिदेव जितरान शकरा जर सतनूना पुत्रसो जितर पितरो भवंति मानो मधियारी।

नमः स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः शिवपरिवार देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो

ओम भूर्वस्वः श्री सवित्रे भास्कराय नमः सूर्यनारायण देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री रामचंद्र परिवार ध्यानम् रामेति राम भद्रे यदि रामचंद्रे दिवा स्मरान्तरोन्दलिप्यते पापैर् भुक्ति मुक्तिं च विन्दति मनोजं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओं भूर्वस्वः श्रीरामचंद्र परिवार देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे पुष्पं समर्पयामि गुरुस्मरणम् ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचोब्येन आवह सबुद्ध्या उपमास्कभिष्टाः सतश्चजोनिम सतश्चभिवः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ओं पूर्वस्मः श्री सद्गुरु देवताभ्यो नमः विश्वगुरुवे नमः सर्वोपचारार्थे कंदाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि गणपति शिव परिवार ध्यानम् हरि ओम मां गणानांत्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानांत्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनांत्वा निधिपति गुं हवामहे बसोम अहम जानकृत मातुम दासकृतम ओम गुरुपस्व सिद्धि बुद्धि सिद्धि श्रीमन महागणाधिपतये नमः सर्वोपचारार्थे कंदाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुनः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा अंबिका ध्यानम् अंबे अंबिके अंबालिके नमः नयति शना सततश्वगः सुभद्रिकाङ्गाम्बीलवासिनम् ओं पूर्वस्वः पार्वतीदेव्यै नमः अंबिकाय नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि जदक्रन्दः प्रथमं जायमान उदयन् समुद्रादुतवा पुरीकात शयनस्य वक्षारणस्य बाहुपसुद्यं महि जातन्ते रभन्न ओं पूर्वस्वः स्कंदाय नमः ओं पूर्वस्वः कार्तिमुखदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुनः हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा ओं मा नमोस्तु सर्पेभ्यो जय के पृथिवी मनो जय गंधर्क्षे जय दिव्येभ्यः सर्पेभ्यो नमः ओं भूर्वस्वः नागराजाय नमः सर्पाय नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि आशुः शिशानो भृगभुवो नभीमोघनागनः अक्षो वनशरिगणीनां संग्रन्दनो निमिक एकवीरः शतघोसेना अजयत्सागमिन्द्रः ओं भूर्वस्वः नन्दीश्वराय नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि हरि ओं मा नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओं त्र्यंबकजामहे सुगंधिं मुष्टिवर्धनं मार्पार्गमिन्द्रान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात् ओं भूर्भुवस्वः स्फटिकमहेश्वर देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि स्नानं कुर्यात् ओं पादयो पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं सर्वांगे जलस्नानं समर्पयामि पृथक् पृथक् पयादीप स्नानं पयस्नानं ओं मा पयः पृथिव्यां पय ओघदीकुपयो

खसो मधुमत्पार्थि भग्नो रजहा मधुर्यो रस्कुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्म मधुमा अस्तु सूर्जहा माद्वीर्गावो भवन्तु नः मधुस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अथ शर्करा स्नानम् अपाग्गुरसमुद्वाय सग्गो सूर्जे सन्तग्गो समाहितं वा अपाग्गुरस्यजोरथस्तम्भो गृह्णा वित्तममुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय द्वादुष्टं गृह्णं मेघतेजो निरिन्द्राय द्वादुष्टतमं वा ॐ पूर्वाश्वः शर्करा स्नानं समर्पयामि इक्षुसारसमुद्भूता शर्करा पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां शर्करा स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि मिलित पंचामृत स्नान ओं पंचानद्य सरस्वतीमभियंति स्रोतस सरस्वती तो पंचदासो देशे पवत्सरित ओं पूर्वस्व द्वादश ओं पूर्वस्व स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नान सर्वयामि पुनः शुद्धोदक स्नान सर्वयामि अग्रे केशरादियुक्त गंधोदक गंधोदक स्नान ओं गंधर्वस्वा विश्वा वसु परिदधातु विश्वस्यारिष्टै यजमानस्य परिदीरसग्निरडैर्डितः मलयाचल सम्भूतं चंदनेन विमिश्रितम् इदं गंधोदकं स्नानं कुंकुमाक्तन्नुमाश्रितम् ओं पूर्वस्वः गंधोदक स्नानं सर्वयामि अग्रे भस्मोदक परिकल्पयामि भस्मोदक स्नानं प्रसदीय भस्माना जोमिनीमवश्य पृथिवी मग्ने सद्गुण सृजय मात्र विश्वं ज्योतिकमान पुनरासद ओं पूर्वस्वः भस्मोदक स्नानं सर्वयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि बिल्वदलपत्राणि समर्पयामि ओं बिल नमो बिल्मिने च कवचने च नमो ब्रह्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चानन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्पापसंवारं बिल्वपत्रं शुभार्पणं सर्वोपचारास्ते स्फटिकमहेश्वर देवताभ्यो नमः बिल्वदलपत्राणि समर्पयामि घ्राणं कृत्वा एक पुष्प को स्वामी जी उठा करके सूंघ के आपके पीछे की तरफ छोड़ना है।

पुष्पाणि समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः। न्यासं कृत्वा हरि ओं मा मनोजोद्रजुगदामाजन्मंदनो वरिष्ठंजद्वादेन्दामो प्रतिष्ठ हृदयाय नमः। अबोधिगणितमिदाजनानां प्रतिदेनमिवायदिमुकादुम्मा जब्बानमत्यामृज्ञानाः प्रभानवहादयागमच्छादृशेत्वाहामूर्तानन्दीवृतिं प्रतिभावेश्वा नरमृतराजादमग्निमागविकोसंराजमजनानामादन्नापादनन्ददेवाहसिकाजितापरमाणदेवर्मणाचादयामि सोमस्तवा राजामृतीनानुपस्ताम्मौरोर्वरीयोवरुणस्थैकृणोति जैनन्द्वानुदेवामनन्दो कवचायोम् ॐ विश्वदच्चक्षुरथ विश्वदोमुखो विश्वदो बाहुरथ विश्वदातासम्भाव्यान्तमतिसंपदरिद्यावा भूमिजनयन्देवैका नेत्रत्रायवशुटा मानस्तोकेन्द्रैमानागिमानुगुमानुषेकामानोऽपीरानुद्भामिनोपदीरे अविग्मन्दासमित्वावामयस्त्रायफट। सर्वोपचारार्थे प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। धाराकरण पात्र पूजा।

ओम पृथ्वी चमेंद्र चमे दक्षण चंद्र चमेंद्र चमे देव चमे चंद्र चमे समाज चमेंद्र चमे नक्षत्राण चमेंद्र चमे दिशा चमेंद्र चमे जतने दाम अग्गो सुषमे रश्मि शमे दाभ्य शमे दीपति चमो बाग चमे त्रजाम चमे इंद्र ऐंद्र वारण चमे मरुण मैत्र वरुण चमे आत्मने चमे प्रतिपनादि शुक्र चमे मंदी चमे जतने दाम आग्रहणे चमे विश्व देव चमे ध्रुव चमे वैश्वादन चमे अंद्राग्नि महावैश्व देव चमे मरुत पदिया चमे निकेवल चमे सारदर चमे सारस्वती चमे वादनी वद चमे हारी योजन विश्व जतने दाम ऋतुश्चमे जमजाजमे वायव्यानचमे द्रोणक्लेशम ग्रावानचमे दिगवनचमे कूतवृचमादिबनचमे बलचमे वृतमे स्वगाकारचमे जद्ने नलतामकरचमे कर्मचमे अग्निचमे गर्भचमे कृष्णमे सूर्यचमे प्राणचमे सुमेतचमे पृथ्वीचमे दीदिचमे दीदिचमे देवचमे गोलयासक्वरयोचमे जद्ने नलताम व्रतंचम रतवचमे संवत्सरचमे होरात्रि उर्वशि व्रतंतरचमे जद्ने नलताम एकात्मे तितरचमे तितरचमे पंचचमे पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे नवचमे नवचमे एकात्मे एकात्मे त्रयोजमे त्रयोजमे पंचजमे पंचजमे सप्तजमे सप्तजमे नवजमे नवजमे एकविकुद्मे एकविकुद्मे एकत्रविकुद्मे त्रयोविकुद्मे पंचविकुद्मे पंचविकुद्मे सप्तविकुद्मे सप्तविकुद्मे नवविकुद्मे नवैकुद्मे एकत्रविकुद्मे एकत्रविकुद्मे चतुर्थचकुद्मे इष्टमे चतुर्थाम्ब ओम चतुर्थचमे इष्टौचमे इष्टौचमे द्वादशमे द्वादशमे घोटचमे घोटचमे विकुद्मे विकुद्मे त्रिविकुद्मे त्रिविकुद्मे अष्टाविकुद्मे अष्टाविकुद्मे द्वात्रिकुद्मे द्वात्रिकुद्मे घटत्रिकुद्मे घटत्रिकुद्मे चतुर्थचकुद्मे चतुर्थचकुद्मे चतुष्वारकुजमे चतुर्थवारकुजमे अष्टाचतुर्थवारकुजमे चतुर्थाम्ब त्रयोविंशमे त्रिविंशमे द्विवारचमे द्विवारचमे पंचाविंशमे पंचाविंशमे त्रिवसजमे त्रिज त्रिवसाजमे त्रिजवाचमे त्रिजौदाम पिष्ठवाचमे पिष्ठौचमे उक्षाजमे वसाजमे ऋगस्मे धेनुष्मे जगदाम ओम बाजाय स्वाहा प्रस्वाय स्वाहा बिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा रतय स्वाहा निनुदाय स्वाहा मुदाय वैन कुजनाय स्वाहा विन कुजना अंत्य स्वाहा अंत्य भुवन सा भुवन सिद्धे स्वाहा दिवते स्वाहा प्रजापते स्वाहा यन्ते रन्द्र इन्द्र सजन उर्जे स्वा पृष्ठे स्वा प्रजानां स्वा अधिपत्याय आयुर्जद्धिङ्गदां प्राणोजद्धिङ्गदां चक्षुजद्धिङ्गदां श्रोत्रजद्धिङ्गदां वाग्जद्धिङ्गदां मनोजद्धिङ्गदां आत्माजद्धिङ्गदां ब्रह्म जद्धिङ्गदां ज्योतिर्जद्धिङ्गदां गुस्वरजद्धिङ्गदां पृष्ठं जद्धिङ्गदां जद्धिङ्गदां तोमश्च जज्जुर्त्यजाम च वृक्षरतन्त्रं च स्वर्देवागन्मामृता भूम प्रजापते प्रजाभूम वेट् स्वाहा हरि ओं मारजम्बाजं प्रभति मनोज प्रभतीय सां प्राणं प्रभति चक्षुर्मृद्य भागो जातौजो मयि प्राण पानो जन्मे छिद्रं चक्षुगो मनसो मनसो बाधितिरण्णं बृहस्पतिर्मे दधातु षण्णो भवतु भुवनस्यजस्पतिः भूर्भुवः स्वः ओं गयानुचराभुवधूति सदावृदा कया सतुष्टयावृदा कृत्वास्तियो मदानं गोष्ठो मत्सदन्दजा दृढाचिदारुजभयो दृढाचिदारुजभसु अभिगुणासखी नामविदाजिदृढामशदम्बुवासि विदुकी कया तुन्न उत्या विप्रमन्दस्य प्रकन्ना कया स्तोत्रभियाभरा इन्द्रो विश्वराजदेशन्नो अस्तुतिपदेशं जगपदेशन्नो मित्रः सन्नो भद्रजमा सन्न इन्द्रो बृहस्पर सन्नो सन्नो मित्रः शम्भरुणा सन्नो भद्रजमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिरधि सन्नो विष्णुर्गुमा सन्नो बाधः भवदाग्सन्नो सुरासन्नाकनकृदा प्रजन्यो अभिवरिकुतो आन शम्भुवन्द्राशकुरा त्रिः वृदाम सन्न इन्द्राग्निभवदामोऽपि सन्न इन्द्राभूगुणा वाजसन्द्रौ सोमासुविदा सञ्जोः सन्नो देवीरविचयापोपवन्तु विदय सञ्जोर्वसनवन्दुनास् योनावृतिनो भवान् रक्षरा निवेशने दच्छानः सनुदृतापोष्टामयो भुवस्थान ऊर्जिजदाधुना महेरणाय चक्षुषे जोभः शिवतमोरसि भाजयतेना उषधीरिग्मातरस्मारङ्गमामवो जसक्षायन्दापोजनयिता जना द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरुपदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्विशान्ति द्रवगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति दृतेदृगुहमा मृद्रसमा चक्षुगा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तामृक्षुगा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मृदस्य चक्षुगा समीक्षामहे दृतेदृगुहमा ज्योक्ते सदृशिव्या संयोक्ते सन्दृशिव्या संभा नमस्ते हरसौचिके नमस्ते सुवर्जिके अन्यास्ते स्मत्तबन्धो यतया भावकोस्मभिगुं शिवो भव नमस्ते सु विद्युते नमस्ते स्नयितराय नमस्ते भगवन् स्वाहा स्वाहा समीयसे चितोहिता समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कृप्रजाभ्यो वैन्ना पशुभ्यः सुमित्रिया न आपवोगतया सन्तु दुर्मित्रिया तन्मयि सन्तु जोस्मान् द्वेष्टिजञ्जभयं दुग्मः तच्चक्षुर्देवैदं पुरस्तात् क्रमचरद वशीमृदाशतं जीवेमृदाशतगूषणो यावदृतं प्रभ्रास्तमदीना हास्यामृदाशतं भूषदृदास्तात् हरिहि ओम् ओम सुस्तिनायन्द्र वृद्ध सर्वा सुस्तिना भूगा विश्वेदाः सुस्तिन स्तारक्षो रचने सुस्तिनो ब्रेस ब्रजातु भयावृतियं भयो ओकदीकोपयो दिव्यन्तरिक्षे भयोदाः वैस्वती प्रतिदा प्रतिशादन्तु जिम्मा विष्णुराटमस विष्णु त्रेतो विष्णु अजूरज विष्णु द्रुभोसि वैष्णवमस विष्णु इतवाग्र देवता वादो देवता दुर्जो देवता जनमा देवता वसो देवता रुद्राजुदा दिया देवता मृदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पत्र देव बृहस्पत्र देवनो देवता वृणो देवता सद्यो जातम पद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल्पकृणाय नमः विकृणाय नमः विलाय नमो
బలప్రమదనాయ సర్వభూతనామినో నాయ మహాగౌరేభ్యో.

0: कुछ ना कुछ तो, कुछ तो हाँ न्यास कर लो जब तक।
1: ओम विश्व चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वतस्पात संभाव्यांतमति संपत्रित्या वा भूमि जनयन् देवैः हानिदताय वसुधा मानस्तो केतनाय मानाग्य मानो गुमानुष्टिक मानो वीरान्द्रवामिनो बदीरे हविकमन्दस्य मितभावा मेस्त्रा यफट ओम मृत्युंजय महादेवत्राय मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं गर्भमन्दनैः भगवते सांबदाशिवाय नमः सर्वोपचारार्थे प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। ओम गौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुमन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वे त्र्यंबकं गौतमीतुडे हिमालुत केदारं कुष्मेदं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातपटे नरः तप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम पूर्वस्वा स्फुटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान्।

0: पंडित वेदा दादाई
1: भाई कई जड़ दिया
0: किमि
1: कुतर्को।
0: किमि हाँ किंकायस्सकुलकिमुपायस्त्रि

ताम संप्रेक्ष ग्रतुषु बलदान प्रतिभुवं ऋतु श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा श्रुतौ श्रद्धामद्वा दृढपरिकरा कर्म सुजना क्रियादक्षो दक्षा क्रतु पतिरदधिस्थान मृतुभृतां ऋषीणामार्तुज्यं शरण सदस्यासुरगणाः कृतभ्रेस्तत्त्वं क्रतु बलविदानव्यसनिनो ध्रुवङ्करतु श्रद्धा विदुरमभिचारा हिमकाः प्रजानातन्नाता प्रसमभिगं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतारिरमैश्यशुभुषा धनुष्पाणैर्यातं दिवमभिपत्राकृतममुं त्रसन्दं दैत्याभि त्यजति न मृगव्यादरवसः कुलावण्या संसादृज मनोमन्नाय दृणवत् पुरं पृष्ठं दृष्ट्वा पुरमत पुष्पा युधमुबी यदिस्त्रैणं देवी यमने हृदय हार्दघटना तवै दत्त्वा मत्वा पत वरद मुग्धा युवतया शमशानेष्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेपस्त्रकोटि परिकरा अमङ्गल्यं शीलं त्वभवतु नामैव किलं तदापि स्मरतूणां व्रतपरममङ्गलम मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्वे संहितायात्तमृता वृषद्रोमाण प्रमदजलोङ्गितसदृशा यदा लोक्याह्लादमृतमयं निमिष्यामृतमदये तदस्तन्तत्वं किमपि यमन्यस्तत्किल भवान् त्वमर्क्तं तोमस्त्वं परम पवनहस्त्वं हुतवधः स्वमा त्वमापस्त्वं व्योमस्त्वम् उधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छन्नामेवं त्वयि प्रणीतां बिभ्रदुगिरां त्वं न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि त्रयीं स्त्रिस्तो वृत्ति स्त्रिभुवनमतो त्रीनभिसुरा न कार्द्यार्दैवरणस्तिभृदतीर्णविकृति तुरीयन्ते दामध्वनि वृणुन्दा वृणुमभि समस्तं विस्तन्त्वा शरणघ्रणत्योमिदमिदं भवत्सरभो रुद्रापशुपतिरतोग्रहसमां सा भीमेशानाविदमिदान्वष्टकमिदमुष्यम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिमभिर्भिया यास्मै दाम्ने प्रवीत नमस्योऽस्मि भवसे नमो नेदिष्ठाय प्रविदविष्ठाय च नमो नेदिष्ठ नमोक्षोदिष्ठाय स्मर हरमैष्ठाय च नमः नमो वरिष्ठाय त्रिनयनविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्वमेदिति सर्वाय च नमः बहुलरसे विष्पोत्पत्तौभवाय नमो नमः प्रबलतत्ते तत्संवारे हराय नमो नमः जनसुहृदे सर्वतोरुण्मृणाय नमो नमः परमहंसिपदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशवृद्धचेतक्लेशवस्यं क्वचेदं क्वचित् गणसीमोल्लङ्घिनी सश्वदृद्धि इति चकितमन्दीं वृत्तिमां भक्तिरादात् वरदृणलोके वाक्यपुष्पोपहारम् असद्गिरसंस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरसागा लेखनीपत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदासर्वकालं तदपि गुणानां ईशमारन्नयाति असुरसुरं निन्द्रयचते सन्धुमूलेकृतगुणैर्नो महेन्द्रगुणैश्चरस्वय सकलगुण सकलगणवरिष्ठ पुष्पजन्ता विधानोर्जुन गोत्रे स्तोत्रमेतचकार आरणमद्यं रुद्रे स्तोत्रमेतत्पठितचित्तमानय स भवति स्वलोके रुद्रतुल्यस्तात्र प्रचुरुद्रायु पुत्रवान् कीर्तिमांश महेशान्नपुरो देवो महिम्नो नापरास्तु यगौरान्नापुरो मन्त्रो नास्ति गुरुपुरं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानयागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य क्लाम्नार्दिषोडशीं कुसुमन्द्रानां सर्वगन्धराज सर्वगन्धर्वराजाचतुर्मौलिदेवदेव सदा स सकलो निजवनं महिम्नो भृष्टैवास रोषास्तमिन्दुकार्श्यं दिव्यदिव्यं महिम्न सुरनरमुनिपूज्यं सर्वमोक्षे हेतुं प्रदीयते मनुष्यप्राञ्जलिर्नानुचेताः व्रजते शिवजीवकिन्द्रस्तूयमानस्तमोगं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्ववाचितम् अनुपम्य मनोहारि शिवमीश्वर महेश्वरम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा शिवमच्चङ्क्रपादयोः अर्पितादिन देवेश प्रीतां मे सदाशिव तव तत्त्वं न जानामि कृदोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वात्रिकालय्य पटेन्द्र सर्वपापनिर्मुक्त शिवलोकमञ्जते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गदेन स्तोत्रेण गिल्विषारेण हरिप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन स्वप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश श्रीस्फटिकमहेश्वरदेवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि दन्तं समर्पयामि हरिः ॐ नैवेद्यं पुरतो निजाय नाभ्यासीदन्तरिक्षकोतिरिष्णो द्यौः समवृतदाभ्यां भूमिजः श्रोत्राजिता लोकामकल्पयन् ॐ सत्यं प्रतेन परिचिञ्चामि मृतो स्वा दीनमुद्रान्तकृत्य ॐ प्राणाय स्वापानाय स्वाभ्यानाय स्वदानाय स्वमानाय स्वप्रणां समानाय स्वपूर्णं ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमद्यमानं समर्पयामि उत्तरापोषणं मुखवासारते बीडाभोगिं ताम्बूलं समर्पयामि नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे ऋतुफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः समर्पदाग्रे पुष्पमालां समर्पयामि विलोत्रं समर्पयामि दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं कृतं दर्शयामि

ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यनी व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ह्रीं रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ ज ॐ जय शिव शंकर स्वामी परिपूर्ण

ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवतायुं नमस्ताभ्याम् आत्मनं गुरुवृक्षालिस्त्वाडमडेत ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेकनागं महिमानः सत्यन्तचरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओं राजातिराजाय पृथय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै शृणो ददातु कुबीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यम बहुजम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज महाधिपत्यमयम सौंदर्यशांतादारदाभ्यसमुद्रपर्यंतायकराजतप्तेतश्लोको विगिदो मृदा परिवेष्टारो मृतस्यावसंग्रह्यावक्षतस्य कामप्रेयर् विश्वे देवासभासदैति ओम्मा विश्वदचक्रुरुत विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुत विश्वदस्पाद संभाव्यान् दमति संभद्रद्यावा भूमिजनयन् देवैकः ओम एकदंडाय महे कृदंडाय धीमे तन्नो दन्ति प्रचोदयात ओम तद्वृगाय महे महादेवाय धीमे तन्नो रुद्र प्रचोदयात नाना सुगंधि पुष्पाणि यदाकालो भगवान् च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन युता सुमन सुगंधि सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पण करु भोलेनाथ करु स्वीकार ओम पूर्वस्मः श्री स्फटिक महेश्वर शुभ परिवार देवताभ्यो नमः चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोली गजानंद सरकार की जय द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव की जय स्फटिक महेश्वर देवता

की जय श्री अलक पुरुषा महादेव की जय श्री देव पुरुषा महादेव की जय दीप नारायण भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय हिंदू धर्म सम्राट स्वामी श्री माधवानंद गुरु जी महाराज की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुदेव की जय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात्

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी महादेव हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की। ब्लेसेड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर एंड सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेलकम ऑल ऑफ यू आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन। वी आर एट लीस्ट विद द वेबकास्ट टूगेदर। आई डू बिलीव यू आर ऑल वेल एंड यू आर डूइंग योर साधनास। द ब्लेसिंग्स टूडे इज कमिंग फ्रॉम द होली भारत, होली इंडिया, द सिटी ऑफ द विजडम, सेकेंड काशी इज जयपुर। वेलकम ऑल ऑफ यू। द सब्जेक्ट टूडे इज अबाउट करुणा एंड दया, विच विल बी स्पोकन बाय आवर रिस्पेक्टेड परमहंस पुष्पाजी, द लीडर ऑफ द योगा सेंटर ऑफ द जयपुर। द योगा सेंटर ऑफ द जयपुर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन

सबसे पहले हम लोग तीन बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। सभी लोग सीधे बैठ जाएं, नाक से लंबा गहरा श्वास लीजिए।

हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती हैं, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं, कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है, कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव माधवानंद जी महाराज जी कहते थे, सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था,

0: बहुत दुखी था, बहुत करारा था, बहुत ज़्यादा दुखी था। तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है। मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाये हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहना है भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation, Austria or India? Okay. India. Yoga and Daily Life
1: Foundation.
2: Yoga in Daily Life.
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to yoga in daily life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me and we'll find a way to get the money and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say?
2: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahma Rishi ji aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahma Rishi, P. Thawla, Nagor.
3: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ों में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोड़ है। 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरोगे। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं। क्या तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

ना करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहाँ जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्यंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी महाराज। विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी

0: Come a little back. Thoda. Mere papiche aao. Ya mere paas mein. Ab dono ek saath saath reho beta. Aur mask nikal do. Sight karo. Slow. Thank you.
1: Shri Deep Nan Bhagwan ki jai. Devi Shramadev ki jai.
0: Thoda dur hai.
1: Hindi Dham Samrat Satguru Swami Madhvanji Bhagwan ki jai. श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय. विदाउट गुरु वी कैन नॉट नो ब्रह्मा विष्णु महेश. एक्चुअली गुरु इज नॉट ओनली ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु इज ऑल्सो पार ब्रह्म परमेश्वर. ओम.

वंदे माता पार्वती सेतु शिव जी, यू आर गॉड ऑफ गॉड, बट एवरी टाइम यू आर मेडिटेटिंग, हु इज योर गॉड? शिव जी सेड, माई गॉड इज माई गुरु.

0: पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परिभज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय।

जब लक घट में प्राण। दया, दया मीन्स मर्सी, कॉम्पेशन, लव। दया धर्म का मूल है। धर्म मीन्स राइटनेस, अचीवमेंट, प्रिंसिपल। अहिंसा परमो धर्मा, द हाइएस्ट प्रिंसिपल इज ए नॉन वायलेंस। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशियल, पॉलिटिकली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इफ यू टॉक बैड अबाउट समवन और दैट, दिस विल कम बैक टू यू। सो यू शुड बी लाइक ए लाइट

नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सद्गुरुदेव की जय। सो विदाउट गुरु कृपा, व्हेन यू गेट अ डाउट, देन यू विल हैव रेस्टलेस एंड यू लॉस्ट अगेन इन द जंगल वेयर यू कांट फाइंड एनी डायरेक्शन एनी मोर। सो मर्सी, दया। सो दिस ब्यूटिफुल पेनफुल एरा ऑफ द ईस्टर्न वी सेड प्रेयर फर्स्ट फॉर मदर मारिया एंड फॉर द जीसस एंड वी थैंक्स देम फॉर देयर मर्सी, देयर ब्लेसिंग्स एंड देयर गाइडेंस। सो माई डियर वन, आई थिंक टूडे इज इनफ। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड प्रोटेक्ट यू, गॉड ब्लेस यू, बी हेल्थी एंड अचीव योर स्पिरिचुअल गोल। एंड वेन गॉड अलाउज अस और ब्लेस अस, वी विल सी अगेन हियर और देयर। थैंक यू। बोल श्रीदीप नारायण भगवान की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। ओम।

हरे भगवान की जय। श्री विष्णु नशा परम स्वामी मश्वन जगुरुदेव की जय।

ॐ षडभुर्ज महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंसम श्री माधवानंदपुरी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंसम महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की।

की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय। आज का आनंद की जय। सब संत शून्य महात्माओं की